0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 647702 B23
1: लाइसेंस नंबर 10394।
2: तंदूरी तंदूरी खाना खाना है ते तंदूरी बॉयज ही जाना है। बड़ा स्वाद वाला फ्लेवर्ड फूड मिलता है, चिकन टिक्का, तंदूरी श्रिंप, तंदूरी फिश, मलाई चाप, तंदूरी मोमोज, ते हां पनीर दी भुर्जी बिल्कुल ना भुलिया जे। लोकेटेड ने 7171 टोरब्रम रोड दे उत्ते, ते दूसरी लोकेशन मैकलोगलन एंड क्वीन ते 905-956-2111 तंदूरी बॉयज।
3: मैनू पता तुहाडी जिंदगी खुशहाल है ते खुशहाली सोहनी लगती है, पर जेकर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी तरह की क्रिटिकल इलनेस का हो जाओ शिकार, तो कौन भरेगा तुहाडे घर की मॉर्गेज, कित्थों आएगी इनकम, किवें चलेगी जिंदगी की गड्डी अगे। अपनी इंश्योरेंस जरूर करवाओ, कॉल करो उमरप्रीत चावला नू, जिन्हां तो मॉर्गेज इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस करवा सकते हो, ते नाल ही विजिटर वीजा इंश्योरेंस, सुपर वीजा, ट्रैवल इंश्योरेंस, RESP ते होर इन्वेस्टमेंट्स लई। हुणे करो कॉल उमरप्रीत चावला नू 6474461616। उमरप्रीत चावला।

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 6474702B23
1: License number 10394

0: जासूस पिंजरा स्काई टीवी पर कॉल कीजिए 9054562733 अल्फा ऑप्टिकल योर विजन इज योर बिजनेस।
1: लो जी एक बार फिर अपना टेस्ट की गल कर लगे हैं, दिल कर रहे हैं ताही तो सिद्ध करने।

कछुरी न जान महादेव को है सदाशिव निरंकार प्राचीन है देव आप अपनी खुद है देते वर्ण तेन तेन तो यही जी जी नज से तज के मुझ खान।

0: नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता
1: यहाँ से आपको ठाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलनी ड्राइव यूनिट 9 और 10 ब्रैम्पटन। टेलीफोन 905-799-9400।

श्री आदित्य कवित्र महामंत्रस्य अगस्त्यो भगवान ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्यो देव

कायै वशतः ॐ ह्रैं कवचाय हुम् ॐ ह्रौं नेत्रत्रयाय वशतः ॐ ह्राः अस्त्राय वशतः तत ध्यानम् नमामि वैरवहं महन्तं शैलं परिशृङ्खरमालयाध्यम् दधानमाख्यामाद सुवर्णभरणं बदीचरत्कुण्डलमाञ्जनीयम् नमो भगवते विचित्रवीर हरमते प्रलय कालानन प्रभाज्वलत्वतापवस्त्रदेहाय अञ्जनीकरबन्धुत प्रकट विक्रम वीर दैत्य दानव यक्ष राक्षस ग्रह बन्धनाय भूत ग्रह प्रिय शाकिनी ग्रह दाकिनी ग्रह काकिनी ग्रह कामिनी ग्रह ब्रह्म ग्रह ब्रह्म राक्षस ग्रह चोर ग्रह बन्धनाय एहि एहि आगच्छागच्छ आवेशयावेशय मम हृदयं प्रवेशय प्रवेशय स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर सत्यं कथय कथय व्याघ्रमुखं बन्धय बन्धय सर्वमुखं बन्धय बन्धय राजमुखं बन्धय बन्धय सभामुखं बन्धय बन्धय शत्रुमुखं बन्धय बन्धय सर्वमुखं बन्धय बन्धय लंका प्रसाद भञ्जन सर्वजनं मे वशमानय वशमानय श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सर्वानाकर्षय आकर्षय शत्रून् मर्दय मर्दय मारय मारय चूर्णय चूर्णय खे खे खे श्रीरामचन्द्राज्ञया प्रज्ञा मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु मम शत्रून् भस्मि कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रैं ह्रों ह्रः फट् श्री विचित्र वीर हनुमते मम सर्व शत्रून् भस्मी कुरु कुरु हन हन हूं फट् स्वाहा एकादश शतवारं जपित्वा सर्व शत्रून् वशमानयति नान्यथा इति इति श्री विचित्र वीर हनुमन माला मन्त्राः सम्पूर्णम् कार्य से।

0: मतः भुजं तु रक्तमानी च चतुर्भुजो मेदयं मुक्षिं रोगापारक कहे भूमिजः
1: सभी को नमस्कार सत श्री अकाल आदाब जय यानी मदद और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। मैं हूं आपकी होस्ट मीरा। तो आपके लिए बहुत बढ़िया सा प्रोग्राम है। आपके लिए लेबर डे लॉन्ग वीकेंड चल रहा है तो आपको जितने भी घूमना है फिरना है बहुत सारे काम भी करने हैं तो आप जरूर अपने पूरे काम करिएगा और साथ में अपना एंजॉयमेंट भी करिएगा। बट डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स बिजी हो गए हैं, बिजी हैं, बच्चों की तैयारी कर रहे हैं स्कूल जाने की। तो सभी के बच्चों को लिए शुभ इच्छाएं हम देते हैं कि उनके बच्चे तरक्की करें, पढ़ाई करें और अच्छे अच्छे मार्क लेके आए। यूनिवर्सिटी जिनके बच्चे जा रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई। जिनके बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे पहली बार स्कूल जा रहे हैं उनको भी बहुत सारी बधाई।
2: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जलवाई विश्वास कर असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल G26 100% कैनेडियन मेड स्वीट्स। ऑल तीन लोकेशंस तो सर्व करते ने। 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्गिन रोड ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1150-2131-1165।
1: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो अब आपने अगर किसी किस्म का फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर अपने घर में लेके आना है और साथ में आपको बढ़िया टीवी लेना है, लेटेस्ट किचन की गैजेट चाहिए, तो आउटडोर फर्नीचर चाहिए, आउटडोर बारबेक्यू चाहिए, ये सारा सामान आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो और जानकारी के लिए आप topchoiceelectronics.com पर जाइए और फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए आप उनको कॉल कर सकते हैं। जी हाँ, 905-709-0045 टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। हैमिल्टन वासियों, कि तुसी अपनी अगली कार लब रहे हो ता अज ही पहुंचो BBT रॉक क्लिफ ऑटो हैमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप इत्थे ही हैमिल्टन विच। साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन, सिर्फ 5,000 तों लैके $1,00,000 तक। ते फाइनेंस दा चिंता ना करो, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49% तों शुरू अते हर तरह दे क्रेडिट वाले कस्टमर्स लई फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हन। जे तुसी हैमिल्टन विच लोकल रहंदे हो तां साडे कोल आओ, साडी लोकल टीम तुहाडी सिचुएशन दे हिसाब नाल तुहाडे लई सब तों वधिया पॉसिबल रेट अते डील लभण लई पूरी कोशिश करेगी। ते जे तुहानूं नवें टायर्स दी लोड है तां ओह वी मिलणगे। 4 टायर्स दा सेट सिर्फ 299 तो शुरू। हुण सुनो AM 530 लिसनर्स लई खास ऑफर, जदों तुसी BBT रॉक क्लिफ ऑटो हैमिल्टन आओ सानू सिर्फ ए दसो मैं AM 530 ते मीरा शर्मा तो तुहाडे बारे सुनिया है अते तुहानूं मिलेगी तुहाडी व्हीकल परचेस ते $500 ऑफ। जी हाँ, $500 दी सिद्धी बचत। तां फिर देर किस गल दी, आज ही विजिट करो BBT रॉक क्लिफ ऑटो हैमिल्टन। कॉल करो 365-384-3840 365-384-3840। दोबारा सुनो 365-384-3840 365-384-3840 BBT रॉक क्लिफ ऑटो हैमिल्टन। लोकल सर्विस, ग्रेट सिलेक्शन, ग्रेट डील्स। BBT रॉक क्लिफ ऑटो हैमिल्टन। जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो अब अगर आपने मूव है तो HK मूवर्स को आप कॉल कीजिएगा। HK मूवर्स कनाडा भर में आपको मदद करते हैं मूव होने में। तो उनकी जो लोकेशन है वो आपके लिए ब्रैम्पटन में है। तो किसी तरह की भी आपको मूविंग करनी है तो आज ही उनको कॉल करिएगा 416-524-804-1652-467-04 HK Movers, आपकी मूव होने की जो समस्या है वो एकदम उनको कॉल करने से हल हो जाती है, क्योंकि मूव होना कोई आसान चीज नहीं होती है, किसी के लिए भी बहुत बहुत सारे काम होते हैं मूविंग में। तो आपका जो एक बार ट्रक बुक करोगे तो बस फिर आपका जो मूव होने का काम है वो समझ लो हो गया। एच के मूवर्स 416-524-6704। अगर आप हैमिल्टन में रहते हो, आपको गाड़ी ठीक करानी है, उबर की अथॉरिटी चाहिए, या फिर उबर की आपको किसी तरह की भी सर्टिफिकेशन करवानी है, तो आप योगीश ऑटो जो कि 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट डाउनटाउन स्टोनी क्रीक में मौजूद है, तो आपको बहुत बढ़िया सर्विस देंगे। कार के टायर चाहिए, कार को विंटराइज करवाना है, ट्यून अप करवाना है, तो आप योगीश ऑटो सेंटर में जाइए 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट हैमिल्टन। तो और जानकारी के लिए आप योगीश ऑटो सेंटर के पास अपनी 70 से 80 टैक्सी हैं। अगर आप हैमिल्टन में टैक्सी चलाना चाहते हो तो आप योगीश ऑटो सेंटर वालों को कॉल करिए, मिस्टर गिल को 905-547-6464 पे आप योगीश ऑटो सेंटर को कॉल कर सकते हो। अगर आप लंदन के आसपास रहते हो, आपके लिए बहुत ही खुशी की खबर है कि भी आपको आपके लिए मास्टर कोलिजन डिपो खुल चुका है लंदन में, तो वहाँ पे आपकी इमेज ऐसा बना देते हैं। तो mastercollisiondepot.com पर जाकर आप उनकी और जानकारी ले सकते हो। तो अब अगर आपने किसी तरह की भी, आप हैमिल्टन के इलाके में रहते हो, आपको किसी तरह की भी आपने गाड़ी की विंटराइज ट्यून अप करवानी है, तो आप योगीश ऑटो सेंटर जाइए। अगर आपने अथॉरिटीज करवानी है, उबर टैक्सी की आपने टैक्सी ली है, तो वो सारी सर्विसेज आपको योगीश ऑटो सेंटर 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट आपके लिए स्टोनी क्रीक डाउनटाउन में मौजूद है। और जानकारी के लिए आप मिस्टर गिल को कॉल कर सकते हो योगीश ऑटो सेंटर, तो 905-547-6464 905-547-6464 योगीश ऑटो सेंटर हैमिल्टन। तो अगर आपने किसी किस्म की भी आपको ट्रक रिपेयर करवानी हो, तो आप जा सकते हो बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर पे। आप जाइए, आपको बहुत बढ़िया सर्विस मिलेगी। तो आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे, तो एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग, आप जरूर एंजॉय कीजिएगा, सुनिएगा। और आपके लिए ये जो लॉन्ग वीकेंड है बड़ा स्पेशल है, और सारी शुभकामनाएं, और बच्चों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। ये जो गाने हैं ये बहुत 1962 फिल्म की आरती, तो रफी साहब का गाया हुआ गीत है।
3: अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारा

0: हैं, तो उम्मीद रखते हो आपको ये गाना बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो आगे भी चलकर आपको बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनाने वाले हैं हम। तो पहले आपको बता दें कि अगर आप अपने घर में अपने घर खरीदा है या फिर बेसमेंट बनवाई है, आपको फ्रिज चाहिए, स्टोव चाहिए, तो आप अगर
1: But it's also a whole event just to get there. Parking's an event. Ride shares boost prices because they know event to hold it. But here's the thing.
0: एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। और अगर आपने फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर लेना है, आपको बेसमेंट बनवाई है, आपने जब घर लिया है, या फिर आपको नया लेटेस्ट टीवी चाहिए, लेटेस्ट सामान आपको मिलेगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी गोल्फ में है। तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाकर उनका जो लॉन्ग वीकेंड स्पेशल्स हैं वो आप देखिएगा और फिर आप अपने ऑर्डर बुक करिएगा। ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल करिए, 905-799-0045 पे कॉल करिएगा। तो अगर आपने कार ट्यून अप करवानी है या फिर आपने हैमिल्टन में टैक्सी चलानी है, तो योगी ऑटो सेंटर वालों के पास 70-80 अपनी टैक्सी है, तो आप उनको कॉल कीजिए। आपने उबर की अथॉरिटीज उनकी सर्टिफिकेशन करवानी है, तो वो भी आप मिस्टर गिल को कॉल करिएगा योगी ऑटो सेंटर पे 905-547-6464। तो अब आपके लिए कभी खुशी कभी गम फिल्म का ये गीत आपके लिए जो ट्रैक है वो पेश कर रहे हैं। उम्मीद रखती हूँ कि आपको

0: की दुआएं कहे, तेरी जोड़ी सलामत रहे।
1: जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में, और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। तो ये जो लॉन्ग वीकेंड, लेबर लॉन्ग वीकेंड होता है, ये सिर्फ स्कूल जाने के शुरुआत नहीं होती है। इसमें अभी जन्माष्टमी थी, सभी मंदिरों में बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई गई, और अभी भी मंदिरों में लोग जा रहे हैं, झूला झूला रहे हैं कृष्ण कन्हैया को, बेबी कृष्णा को। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि शादियां बहुत होती हैं लेबर डे लॉन्ग वीकेंड में, बहुत सारी है शादियां होंगी इस लॉन्ग वीकेंड में, और शादियों में अटेंड करेंगे। तो तभी मैंने ये जो गाना लगाया था, बड़ा फेस्टिव सा गाना है, तो इसलिए मैंने ये वाला गाना आपके लिए लगाया है। तो उम्मीद रखती हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। इसी तरह हम जितनी देर भी हमारा साथ है, बढ़िया सा आपका मनोरंजन करते रहेंगे। और ये कृष्ण कन्हैया का जन्मदिन है, तो राधा का गाना भी जरूर लगाएंगे। जी हाँ, तो वो वाला गाना भी आपको जरूर सुनाया जाएगा। पर पहले आपको बता दें कि अगर आपने फ्रिज, स्टोव, वॉशर ड्रायर या बढ़िया क्वालिटी का आपने टेलीविजन लेना है, तो ये सारा सामान आपको मिलता है टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स के, बहुत बढ़िया रेट में मिलता है। तो आप वहाँ पे जाइए, और उनकी स्पेशल्स का जो लेबर डे स्पेशल है, लॉन्ग वीकेंड स्पेशल है, उनका फायदा उठाइएगा। तो ये जो आपके लिए है, तो आपको अगर बहुत बढ़िया सी आपको टीवी लेनी है, या फिर आपने आउटडोर फर्नीचर लेना है, घर में फर्नीचर लेना है, बढ़िया क्वालिटी बढ़िया प्राइस, तो आप जाइएगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। एक लोकेशन उनकी इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड ब्रैम्पटन में है, दूसरी लोकेशन ग्वाल्फ में। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाइए, उनकी स्पेशल देखिए, फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-700-0045 पर कॉल कीजिए। अगर आप मूव होने वाले हैं, HK मूवर्स को कॉल कीजिए 416-524-7046-524-6704। और लंदन वासियों के लिए बड़ी खुशी की खबर है कि आपके लिए आपके शहर में मास्टर कोलिजन डिपो खुल चुका है गोर रोड पे। वहाँ पे जाइए, अपनी कार वैन ट्रक का कोई भी कोलिजन का काम करवाना है करवाइए,

आपका स्वागत है खास संसार में। और जैसे मैंने कहा कि आपका लॉन्ग वीकेंड है, साथ में अपना ख्याल प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अपनी सुरक्षा रखिए, अपने परिवारों के साथ बड़ा अच्छा। बहुत सारे लोग पिकनिक कर रहे हैं, बहुत जैसे आप तो अब आपके लिए एक और बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाऊंगी। तो ये जो गाना है ये भी राधा वाला है, तो कृष्णा के लिए ही हम ऐसे गीत आपको सुनाएंगे थोड़े से। तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है, मैं यहीं भी आपसे विदा लेती हूँ। हैव ए सेफ वीकेंड एंड ए ग्रेट वीकेंड। प्लीज डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, और खुद भी एंजॉय कीजिए, अपने आसपास वालों को भी एंजॉय करवाइएगा, उनकी खुशी का भी जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आप अपने आसपास के लोगों की खुशी का ध्यान रखेंगे तो वो सब कितने सारे लोग आपकी खुशी का भी ध्यान रखेंगे। इसी विचार के साथ

0: he's special.
1: नौ सौ पांच चार सौ छपंजा सताई तेती पर कॉल कीजिए 9054562733 अल्फा ऑप्टिकल योर विजन इज योर बिजनेस.

0: रात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता
1: नॉर्थ अमेरिका का सब तो बड़ा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
2: यहाँ से आपको ठाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव यूनिट 9 and 10 ब्रैम्पटन। टेलीफोन 905-799-9400।

0: रक्तांबरपातु नेत्रे मे रक्तलोचनः नासिका मे शक्तिधरः कंठं मे पातु भौमकः भुजौ तु रक्तमाने च चतुर्भुजो मे दयं मुक्षिं रोगापहारकः कटे भूमिजः
1: सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हम या अली मदद। और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार, मैं हूं आपकी होस्ट मीरा। तो आपके लिए बहुत बढ़िया सा प्रोग्राम है। आपके लिए लेबर डे लॉन्ग वीकेंड चल रहा है, तो आपको जितने भी घूमना है फिरना है, बहुत सारे काम भी करने हैं, तो आप जरूर अपने पूरे काम करिएगा और साथ में अपना एंजॉयमेंट भी करिएगा। बट डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स बिजी हो गए हैं, बिजी हैं, बच्चों की तैयारी कर रहे हैं स्कूल जाने की। तो सभी के बच्चों को लिए शुभ इच्छाएं हम देते हैं कि उनके बच्चे तरक्की करें, पढ़ाई करें और अच्छे अच्छे मार्क लेके आए। यूनिवर्सिटी जिनके बच्चे जा रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई। जिनके बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे पहली बार स्कूल जा रहे हैं उनको भी बहुत सारी बधाई।
2: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और विश्वास कर असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026% कैनेडियन मेड स्वीट्स। और तीन लोकेशन तो सर्व करते ने, 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्ड्रन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1115।
1: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है डॉक्टर सार में। तो अब आपने अगर किसी किस्म का फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर अपने घर में लेके आना है और साथ में आपको बढ़िया टीवी लेना है, लेटेस्ट किचन की गैजेट चाहिए, तो आउटडोर फर्नीचर चाहिए, आउटडोर बारबेक्यू चाहिए, ये सारा सामान आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो और जानकारी के लिए आप topchoiceelectronics.com पर जाइए और फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए आप उनको कॉल कर सकते हैं। जी हाँ, 905-709-0045 टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। हैमिल्टन वासियों, कि तुसीं अपनी अगली कार लब रहे हो तो अज ही पहुंचो बीबीटी रॉक क्लिफ ऑटो हैमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप इत्थे ही हैमिल्टन विच। साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन, सिर्फ $5,000 तों लैके $1,00,000 तक। ते फाइनेंस दा चिंता ना करो, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49% तो शुरू, अते हर तरह के क्रेडिट वाले कस्टमर्स लई फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हन। जे तुसी हैमिल्टन विच लोकल रहंदे हो तां साडे कोल आओ, साडी लोकल टीम तुहाडी सिचुएशन दे हिसाब नाल तुहाडे लई सब तो वधिया पॉसिबल रेट अते डील लभण लई पूरी कोशिश करेगी। ते जे तुहानू नवें टायर्स दी लोड है तां ओह वी मिल मिलणगे। चार टायर्स दा सेट सिर्फ 299 तो शुरू। हुण सुनो AM530 लिसनर्स लई खास ऑफर, जदों तुसी बीबीटी रॉक क्लिफ ऑटो हैमिल्टन आओ सानू सिर्फ ए दसो, मैं AM530 ते मीरा शर्मा तो तुहाडे बारे सुनिया है, अते तुहानू मिलेगी तुहाडी व्हीकल परचेस ते $500 ऑफ। जी हां, $500 दी सिद्धी बचत। तां फिर देर किस गल दी, अज ही विजिट करो बीवीटी रॉक क्लिफ ऑटो हैमिल्टन। कॉल करो 365-384-3840 365-384-3840। दोबारा सुनो 365-384-3840 365-384-3840 बीवीटी रॉक क्लिफ ऑटो हैमिल्टन। लोकल सर्विस, ग्रेट सिलेक्शन, ग्रेट डील्स। बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन। जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो अब अगर आपने मूव है तो HK मूवर्स को आप कॉल कीजिएगा। HK मूवर्स कनाडा भर में आपको मदद करते हैं मूव होने में। तो उनकी जो लोकेशन है वो आपके लिए ब्रैम्पटन में है, तो किसी तरह की भी आपको मूविंग करनी है तो आज ही उनको कॉल करिएगा 416-524-7404 HK Movers, आपकी मूव होने की जो समस्या है वो एकदम उनको कॉल करने से हल हो जाती है, क्योंकि मूव होना कोई आसान चीज नहीं होती है, किसी के लिए भी बहुत बहुत सारे काम होते हैं मूविंग में। तो आपका जो एक बार ट्रक बुक करोगे तो बस फिर आपका जो मूव होने का काम है वो समझ लो हो गया। एचके मूवर्स 416-524-6704। अगर आप हैमिल्टन में रहते हो, आपको गाड़ी ठीक करानी है, उबर की अथॉरिटी चाहिए, या फिर उबर की आपको किसी तरह की भी सर्टिफिकेशन करवानी है, तो आप योगीश ऑटो जो कि 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट डाउनटाउन स्टोनी क्रीक में मौजूद है, तो आपको बहुत बढ़िया सर्विस देंगे। कार के टायर चाहिए, कार को विंटराइज करवाना है, ट्यून अप करवाना है, तो आप योगीश ऑटो सेंटर में जाइए, 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट हैमिल्टन। तो और जानकारी के लिए आप योगीश ऑटो सेंटर के पास अपनी 70-80 टैक्सीज हैं। अगर आप हैमिल्टन में टैक्सी चलाना चाहते हो तो आप योगीश ऑटो सेंटर वालों को कॉल करिए, मिस्टर गिल को 905-547-6464 पे आप योगीश ऑटो सेंटर को कॉल कर सकते हो। अगर आप लंदन के आसपास रहते हो, आपके लिए बहुत ही खुशी की खबर है कि अभी आपको आपके लिए मास्टर कोलिजन डिपो खुल चुका है लंदन में, तो वहाँ पे आपकी मेज जैसा बना देते हैं, तो mastercollisiondepot.com पर जाकर आप उनकी और जानकारी ले सकते हो। तो अब अगर आपने किसी तरह की भी, आप हैमिल्टन के इलाके में रहते हो, आपको किसी तरह की भी आपने गाड़ी की विंटराइज ट्यून अप करवानी है तो आप योगीश ऑटो सेंटर जाइए। अगर आपने अथॉरिटीज करवानी है, उबर टैक्सी की आपने टैक्सी ली है, तो वो सारी सर्विसेज आपको योगीश ऑटो सेंटर 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट आपके लिए स्टोनी क्रीक डाउनटाउन में मौजूद है। और जानकारी के लिए आप मिस्टर गिल को कॉल कर सकते हो, योगीश ऑटो सेंटर, तो 905-547-6464 योगीश ऑटो सेंटर हैमिल्टन। तो अगर आपने किसी किस्म की भी आपको ट्रक रिपेयर करवानी हो तो आप जा सकते हो बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर पे, आप जाइए, आपको बहुत बढ़िया सर्विस मिलेगा। तो आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे तो एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग, आप जरूर एंजॉय कीजिएगा, सुनिएगा। और आपके लिए ये जो लॉन्ग वीकेंड है बड़ा स्पेशल है, और बहुत सारी शुभकामनाएं, और बच्चों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। ये जो गाने हैं ये बहुत 1962 फिल्म की आरती, तो रफी साहब का गाया हुआ गीत है।
3: अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबों।

0: ना तो उम्मीद रखती हूँ आपको ये गाना बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो आगे भी चलकर आपको बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनाने वाले हैं हम। तो पहले आपको बता दें कि अगर आप अपने घर में अपने घर खरीदा है या फिर बेसमेंट बनवाई है, आपको फ्रिज चाहिए, स्टोव चाहिए, तो आप
1: But it's also a whole event just to get there. Parking's an event. Ride shares boost prices because they know event to hold it. But here's the thing.
0: एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। और अगर आपने फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर लेना है, आपको बेसमेंट बनवाई है, आपने जब घर लिया है, या फिर आपको नया लेटेस्ट टीवी चाहिए, लेटेस्ट सामान आपको मिलेगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी गोल्फ में है। तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाकर उनका जो लॉन्ग वीकेंड स्पेशल्स हैं वो आप देखिएगा और फिर आप अपने ऑर्डर बुक करिएगा। ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल करिए, 905-799-0045 पे कॉल करिएगा। तो अगर आपने कार ट्यून अप करवानी है या फिर आपने हैमिल्टन में टैक्सी चलानी है तो योगी ऑटो सेंटर वालों के पास 70-80 अपनी टैक्सी है, तो आप उनको कॉल कीजिए। आपने उबर की अथॉरिटीज उनकी सर्टिफिकेशन करवानी है तो वो भी आप मिस्टर गिल को कॉल करिएगा योगी ऑटो सेंटर पे 905-547-6464। तो अब आपके लिए कभी खुशी कभी गम फिल्म का ये गीत आपके लिए जो ट्रैक है वो पेश कर रहे हैं। उम्मीद रखती हूँ कि आपको पसंद आएगा।

0: की दुआएं कहे, तेरी जोड़ी सलामत रहे।
1: जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है गैस संसार में, और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। तो ये जो लॉन्ग वीकेंड, लेबर लॉन्ग वीकेंड होता है, ये सिर्फ स्कूल जाने के शुरुआत नहीं होती है। इसमें अभी जन्माष्टमी की सभी मंदिरों में बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई गई, और अभी भी मंदिरों में लोग जा रहे हैं, झूला झूला रहे हैं कृष्ण कन्हैया को, बेबी कृष्णा को। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि शादियां बहुत होती हैं लेबर डे लॉन्ग वीकेंड में, बहुत सारी है शादियां होंगी इस लॉन्ग वीकेंड में। और शादियों में अटेंड करेंगे, तो तभी मैंने ये जो गाना लगाया था, बड़ा फेस्टिव सा गाना है, तो इसलिए मैंने ये वाला गाना आपके लिए लगाया है। तो उम्मीद रखती हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। इसी तरह हम जितनी देर भी हमारा साथ है, बढ़िया सा आपका मनोरंजन करते रहेंगे। और ये कृष्ण कन्हैया का जन्मदिन है, तो राधा का गाना भी जरूर लगाएंगे। जी हाँ, तो वो वाला गाना भी आपको जरूर सुनाया जाएगा। पर पहले आपको बता दें कि अगर आपने फ्रिज, स्टोव, वॉशर ड्रायर या बढ़िया क्वालिटी का आपने टेलीविजन लेना है, तो ये सारा सामान आपको मिलता है टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स के, बहुत बढ़िया रेट में मिलता है। तो आप वहाँ पे जाइए और उनकी स्पेशल्स का, जो लेबर डे स्पेशल है, लॉन्ग वीकेंड स्पेशल है, उनका फायदा उठाइएगा। तो ये जो आपके लिए है, तो आपको अगर बहुत बढ़िया सी आपको टीवी लेनी है, या फिर आपने आउटडोर फर्नीचर लेना है, घर में फर्नीचर लेना है, बढ़िया क्वालिटी बढ़िया प्राइस, तो आप जाइएगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। एक लोकेशन उनकी इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड ब्रैम्पटन में है, दूसरी लोकेशन ग्वाल्फ में। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाइए, उनके स्पेशल देखिए, फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-700-0045 पर कॉल कीजिए। अगर आप मूव होने वाले हैं, HK मूवर्स को कॉल कीजिए 416-524-6-524-6704। लंदन वासियों के लिए बड़ी खुशी की खबर है कि आपके लिए आपके शहर में मास्टर कोलिजन डिपो खुल चुका है गोर रोड पे। वहाँ पे जाइए, अपनी कार वैन ट्रक का कोई भी कोलिजन का काम करवाना है, करवाइए, तो आप को बहुत बढ़िया आपको काम करके देंगे। तो मास्टर कोलिजन डिपो .com पर जाइए और उनके बारे में और जानकारी लीजिए।

प्यारा सा गीत सुनाऊंगी। तो ये जो गाना है ये भी राधा वाला है, तो कृष्णा के लिए ही हम ऐसे गीत आपको सुनाएंगे थोड़े से। तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है, मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। हैव ए सेफ वीकेंड एंड अ ग्रेट वीकेंड। प्लीज डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, और खुद भी एंजॉय कीजिए, अपने आसपास वालों को भी एंजॉय करवाइएगा, उनकी खुशी का भी जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आप अपने आसपास के लोगों की खुशी का ध्यान रखेंगे तो वो सब कितने सारे लोग आपकी खुशी का भी ध्यान रखेंगे। इसी विचार के साथ, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सुआदा भला है वंडरफुल।

बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें, और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, द लार्जेस्ट इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चेन इन कनाडा। फाइंड आउट मोर एट rajdhanisweets.ca।
2: गार्निशमेंट, पावर ऑफ सेल नोटिस, बैंक वालों पैसे दी मंग, उन्हें ही सानू कॉल करो, फिर तो अनु कोई नहीं कर सकेगा तंग। कर्जा माफ कराओ, 100% मानसिक शांति पाओ, कलेक्शन कॉलों तो छुटकारा, बिना ब्याज निकिया निकिया किश्तां। कॉल करो कनाडा कंज्यूमर क्रेडिट असिस्टेंस 416-502-3100। कर्जे तो परेशान, असी करांगे कम आसान। 416-502-3100।
3: इमेजिन करो कि तुसी एक घर खरीदना चाहते हो, सोना जिया क्यूट जिया घर, वधिया लोकेशन एंड इन बजट। यू देन कॉल योर फ्रेंड्स, देन दे कॉल देयर फ्रेंड्स एंड दे कॉल यू बैक सेइंग लब दंगे वरी ना कर। तुसी थोड़ा जा वरी कर दियो, समझ नहीं आ रहा हुंदा की करिए किवें करिए, देन सडनली तुसी एक कमर्शियल सुन दे।
4: दिस इज हरजिंदर गिल फ्रॉम रीमैक्स गोल्ड रियल्टी। यू गॉट इट राइट, जस्ट कॉल हिम एंड यू आर सॉर्टेड। लोकेशन, प्रॉपर्टी, बजट, मार्केट सर्च, एवरीथिंग हरजिंदर गिल ते छड़ दवो। तुसी बस मठियाई दा डब्बा तैयार करो। हरजिंदर गिल 647-400-6862 और विजिट teamharjindergill.com, helping you to fulfill your real estate plans.
5: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 6474-88-12।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: विजिटर टू कनाडा आउट ऑफ प्रोविंस कवरेज बाय करना चाहते हो या अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ले सुपर वीजा इंश्योरेंस दे बेस्ट रेट्स बेस्ट प्लान्स एट द बेस्ट ऑप्शन बारे या फिर 40-45% का डिस्काउंट लेना चाहते हो तो हमें कांटेक्ट करो 647-400-88-12 647-400-6862 इश्तिहार है तो व्यापार है अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-6862 जी मीडिया ग्रुप

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, द लार्जेस्ट इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चेन इन कनाडा। फाइंड आउट मोर एट rajdhanisweets.ca।
2: ਚੰਗੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਦਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੀਮੈਕਸ ਗੋਲਡ ਰਿਐਲਟੀ ਦੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਹੋ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਏ ਔਰ ਸੈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰ ਰੀਟੇਲ ਯੂਨਿਟਸ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਾ ਸੁਣਿਆ। Harjinder Gill, with vast variety of marketing, promotions and showcasing your next home deal, Harjinder Gill is the name to call at 647-400-6862 or visit teamharjindergill.com, helping you to fulfill your real estate plans.
3: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-6862 जी मीडिया ग्रुप।
4: दोस्तों स्वागत है तुहाडा एक बार फिर रेडियो रम्स पंजाबी द वीकेंड शो ते मैं प्रभजीत बोपर है तुहाडा स्वागत करदा जी। इस वेले समा 12:48 हो गए जी, जिथे हर एतवार तुहाडा साडा साथ 2 घंटे का रहिंदा जी, 12 बजे तो लैके 1 बजे तक रेडियो रम्स पंजाबी ते 1 to 2 रेडियो नज़रिया तो तुहाडा साडा साथ हुंदा जी। ते तुसीं जे तुसीं स्टूडियो च कोई कॉल करना चाहुंदे हो, कोई लौंग विंगड दे रिलेटेड, लेबर डे दे रिलेटेड कोई गल करना चाहुंदे हो, तो स्टूडियो का नंबर है 416-233-7368 ते 416-233-8297। तो दोस्तों अपने शहर के सुनंदा शर्मा का लाइव इन कंसर्ट द विक्टरी टूर 2026 होने जा रहा जी, तो इस दे वास्ते सोलो टूर है जी, उन्हां दा इकल्ले ही गाउणगे सुनंदा शर्मा दे स्टेज ते रौनकां लाउणगे। जिहड़ा ऐतवार अक्तूबर 18 द ग्रेट द थिएटर एट ग्रेट कनेडियन टोरंटो दे विच होने जा रहा जी, उस दे वास्ते टिकटां अवेलेबल ने, तुसीं ticketmaster.ca तों टिकटां खरीद सकदे हो, ते जां वधेरे जानकारी लई तुसीं 647-400-6862 हरजिंदर गिल साहब उन्हों का नंबर है जी। इस दे वास्ते जे तुसीं कोई स्पॉन्सरशिप तुसीं देना चाहुंदे हो जां कोई टिकटां दे रिलेटेड कोई गलबात करनी है, तो तुसीं साडे जी मीडिया ग्रुप 647-400-6862 दे उत्ते संपर्क कर सकते हो। तो दोस्तों एक स्पेस ऑफिस स्पेस रेंट के उत्ते अवेलेबल है जी, ट्रेनमेंट ड्राइव के उपर डेयरी एंड डिक्सी का इंटरसैक्शन पैंता जी नीयर वे, तो इस वास्ते तुसीं मनजीत गिल साहब उन्हां नाल संपर्क कर सकते हो 416-669-1389। तो गिल साहब हुण मनजीत गिल वीर नूं ही 2 bedroom की कोंडो अपार्टमेंट वाटरलू यूनिवर्सिटी के एरिए चाहिए वो आस पास, जे कोई वेचना चाहता वीर भैन भरा तो वो वास्ते तुसीं मनजीत गिल साहब उन्हां नाल संपर्क कर सकते हो 416-669-1389। तो दोस्तों मिलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक तो बाद।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: Ishtihar hai

का व्यापार है। अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 6474088-6474006862 जी मीडिया ग्रुप।

0: ग्लास एंड विंडो 9057908335 7903335 और विजिट www.rithiglass.com।
1: हर महीने मैकेनिक नु पैसे दे दंदे हो, ट्रक खरीदे आया मैकेनिक नु गोद ले ले है।
2: ओ मैं की करा, ये पुराना ट्रक ता रोज नखरे करता है।
1: नखरे छड़ो ते सिद्धे जाओ निस्को ट्रक सेल्स ते।
3: वधिया हालत वाले यूज्ड ट्रक्स, ट्रक को बेचना होवे या खरीदना, रेट बिल्कुल वाजब लौंदे ने।
1: फाइनेंस दी सुविधा भी उपलब्ध है,
3: मतलब जेब भी सेफ ते घर वाली भी खुश। बस फिर आज ही चलते हैं निस्को ट्रक सेल्स, टोरब्रम डेरी दे नजदीक 7055 टोरब्रम रोड मिसीसागा। कॉल 6745189999। ट्रक ऐसे के मैकेनिक भी कहेगा हुन मैं की करा।
4: Culture of Punjab, serving the South Asian community in and around the GTA. For exciting packages, promotional offers, and inquiries, please call 416-677-0609. That's 416-677-0609. Culture of Punjab.
5: Ladies and gentlemen, introducing from CHLO AM 530, the number one radio host in the world.

मतलब बड़ी चैन दी कह लो या कह लो चैन दा सा आ रहा है मेनू क्योंकि अज गुरप्रीत संधा वालिया मेरे नाल नहीं आया बड़ा सुख दा सा लै रही हां बाकी अज मेरे नाल ना एक स्पेशल पर्सनैलिटी आई है क्योंकि मैं सोचा भी गुरप्रीत की थां ते किसी होर नूं भी मौका मिलना चाहिए ना गल्लां बातां करन दे लई सो कौन ने दस दिया थानू पहला गाना सुन लो।

0: तक दा कोई रीस
1: असी हां कल्चर ऑफ पंजाब
2: कल्चर ऑफ पंजाब
0: बेहतरीन पंजाबी एंटरटेनमेंट दी मुंह बोल दी तस्वीर एशियन कम्युनिटी दा मनपसंद रेडियो शो कल्चर ऑफ पंजाब
1: तेजी नाल वाज रहे रेडियो शो जिसको पूरे कनाडा ने दिता है अपना प्यार
0: कल्चर ऑफ पंजाब नाल जुड़ो ते तरक्की दे रस्ते ते अगे वधो एडवर्टाइजमेंट इंक्वायरीज
1: ट्यून इनटू कल्चर ऑफ पंजाब
0: एंड नो द डिफरेंस

0: हाँ जी हरमन जी।
1: अरे हाले तई कोई फर्क नहीं पिया।
0: फर्क जे पै गया दिलां विच नी फिर तू रोवेंगी।
1: मैं क्यों रोऊंगी?
0: ए फर्क नी पैना चाहिदा फिर के दे कपड़े धोवेंगी।
1: दिल दा कपड़ा ना कि जबान।
0: मैं तो रंग दी गल करदा भी भाई चंगा साबण वरत्या करो। हाँ। माड़े साबण ना रंग उड़ जांदा।
1: ओ जेड़ा गुरप्रीत संधा वाले वरतदा छोकरा मारका ओ नहीं वरतना।
0: हाँ जी।
1: अच्छा जी, ये कपड़ियां दे रंग उड़े दा ही नतीजा कि अज इदा दा हो गया।
0: हाँ जी
1: हाँ जी
0: हाँ जी।
1: चलो मैं तुहानू फिर अज एक गल सुनानी आ।
0: दसो।
1: कहंदे कि जेड़ियां बादल सरकार दियां नीतियां ना।
0: बादल सरकार दियां नीतियां पहिलां मैनूं ये दसो भी है केड़ियां।
1: चलो जेड़ियां भी आ।
0: ना इदां थोड़ा हुंदा, जेड़ियां केड़ियां दा की मतलब है?
1: देखो उन्होंने
0: समझाओ ना पहलां।
1: की समझावां
0: भाई? साडे पल्ले तां पाओ।
1: केड़ियां
0: नीतियां ने
1: उन्होंने जो क्या है पहलां ओह गल तां सुन ला।
0: सुन लांगे, पहलां गल तां दसो भी नीति केड़ी है।
1: मेनू नहीं पता।
0: अच्छा
1: धर्मेंद्र
0: भाई दा मुंडा
1: वड्डे आला।
0: वड्डे आला
1: हां।
0: वैसे मेनू पता लग गया भी सनी देओल कोलों क्यों मशहूरी करवानी है।
1: क्यों?
0: ओ इस करके कहंदे भी पंजाब च पानी दा थल्ले चली गई।
1: अच्छा।
0: नलके पानी कढ दे नी, नाले नलके पटा लांगे, नाले प्रचार करा लांगे।
1: एक होर भी है लिस्ट च।
0: ओदी लिस्ट दा फेस ना हो, पहला गाना सुनना ही नहीं तां मैं रो पैणा जी।

0: बाप जी मेरा बिजनेस नहीं है चलता, बाबा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख लेने, कोई गल नहीं पड़ती, बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा, $5 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, बाबा जी मेरा बिजनेस चला दियो।
1: मैनू क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, देव तात्रे नु कॉल कर, रेडियो ते अपने कारोबार दी ऐड चला, भाई स्पेशल पैकेज ने उना कोल, फोन कर 416-677-0609 416-677-0609।
0: हां जी मैडम जी, बोलदे नी जी तुसी
2: बोलदी
0: गल नहीं सुना, मैं यही गल सुनी जी, सची है जी। ओ
2: केड़ी गल,
0: कहदी हरियाणे का जेड़ा मुंडा सी जी, छोटी जी उम्र दा जी,
2: ओ कटल्लिया,
0: हां जी
2: गूगल बॉय,
0: मतलब ओदा नाम मैं समझ गया जी, किवें रखा होगा जी,
2: किवें रखा,
0: पहला तो जी मतलब ओ जरा खेडदा रहा होगा जी, मतलब पापा घर आया होगा, उन्हें कहा होना भी किधर गया हो, मां ने कहता होना भी हां मतलब बाहर खेडदा, पापे ने लिया के फिर अंदर रखता होना, अंदरों फिर रोन की आवाज आई होनी, फिर मां ने पूछा होना
2: की
0: कुट लिया।
2: अच्छा ओ कुट लिया नहीं है, ओ कुट लिया या
0: हां कुट लिया या,
2: हां तेरे अपने लॉजिक हर थां ते अपनी
0: बोलना ही है, जिवे मर्जी करो, भी उन्हें तां पूछना है भी कुट लिया।
2: काका तू ओ दे ना ना ते ना जा, जिन्नी ओनू नॉलेज आ ना,
0: ओ मैं ओही कहना भी ओनू नॉलेज ता फिर आपे ही आई नहीं सी जी,
2: क्यों
0: कहदे हुंदे ने डंडा पीर है वेगड़ियां देगड़ियां दा
2: तेरे द्वारे भी मेनू घुमाउणा पैणा, मेनू
0: नहीं ओदा ठीक आ, पर कहदे भी ओनू हुण 10 लाख रुपया सरकार ने देता,
2: हां देता
0: बई कमाल ही होगी हुण ता,
2: मतलब इसलिए हुण जे तू 10 लाख लेना तेरे द्वारे भी डंडा घुमावा एक करी,
0: फिर एदा मतलब हुण ओदा नाम बदल जो,
2: की बदल जो,
0: कुटिया सी कर देणगे हुण,
2: ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ
0: ਆਹੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਭਾਪੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਕੁੱਚੂ ਕੁੱਚੂ ਕੁੱਚੂ ਕੁੱਚੂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਭਾਪਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ।

0: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca.
1: डेटा विच रहते हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
2: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस दे सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
3: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो तो सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 4567-3381
1: नाली। जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउंगे। हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट